सबों कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उना दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उना ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे व्यापारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा वाहिगुरु तों।

मनुख भगती करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहने ने बड़ा सुखैन तरीका है महापुरुषां दे चरणां दी पूजा कर।

कैसी बंदे दे पल्ले की रह गई, मनुख की सारी शक्ति टोटे टोटे हो। कितनी यदि ताकत इस काम ते लग गई कि जो कुछ मैं हां वो लुकिया रह जा, लोकी ना वेख लै और इना लुकाया अपने आप नू, अपने आप दा आप ही पता ना रह गया मैं की। लोकां दी निगाहां तो कोई चीज छुपाई जावे ते अपनी निगाह तो भी छुप जांदी। घर च पई कोई वस्तु असी चाहिए घर विच आउण वाला ना वेखे, असी उत्ते कपड़ा पा देने, कज देने, ढक देने, रख देने लुका के, हुंदा की ए आप ही भुल जांदी भी घर च है सी कि नहीं। रखी हुई वस्तु, लुकाई हुई वस्तु अपने चेते तो लह जांदी। मैं निंदक हां, मैं लोकां नू नहीं दसना चाहुंदा। मैं किरत घर हां, मैं किसे नू कहांगा। मैं कामी हां, मैं क्रोधी हां, मैं किसे नू नहीं कहांगा, लुकावांगा। ते हुंदा की है आप नू नहीं पता रहिंदा कि मैं कामी हां। अपनी निगाह तो अपना आप ही ओझल हो गए, गुनाह अंदर पलदे रहे, अंदर पए हुए दोष, अंदर पए हुए दोख अंदर टिके रह गए। इहदे नाल बेहतर तां सी या तां आप निगाह रखदा या दूजिआं नू निगाह रखण दिंदा, की हर्ज सी। लोक वेख लैंदे थोड़ा जिहा माड़ा कह लैंदे, लेकिन घटो घट दोख घरों सुट्टण दी, घरों कढ़ण दी गल तां बण जांदी। भाई गुरदास जी ने मनुख दी इस कमजोरी वल निगाह पवाई। भाई साहब कहंदे ने आओ अपने वल वेखी, लोकां वल वेखदे रहांगे अपना आप लुकाउंदे रहांगे, गलती हो जावे। बहुत ताकत लगदी, बड़ी शक्ति लगदी, जो कुछ मैं नहीं हां वो विखाउण ते भी शक्ति लगदी, जो कुछ मैं हां उस नूं लुकाउण ते भी शक्ति लगदी। और जिहड़ा कहंदे ना कोई चीज चेते करनी होवे ते मत्थे ते हथ मारदा है बंदा, ते कई बार ऐसा भी हुंदा है कोई चीज बंदा भुलाउणा चाहुंदा होवे ते भुलदी ना होवे, उहदे ते भी बड़ा जोर लगदा। कई तां पागल लोग शराबां पीण तुर पैंदे ने, शराब पी के भुला देवां, किसे होर पासे परच जावां भुल जावां। कोई डरावनी चीज वेख लई, कोई गुनाह हुंदा वेख लिया कि गुनाह करदिया ख्याल आ गया, ते बंदा चाहुंदा वो जिहड़ा बोझ दिमाग ते है जो सौण नहीं देंदा, खान नहीं देंदा, बहन नहीं देंदा, उस बोझ नूं लाउण वास्ते बंदा भुलाउणा चाहुंदा, बड़ी ताकत लगदी है भुलाउण ते भी बड़ी ताकत लगदी। ते बंदे दी शक्ति जे इसे पासे लगदी रही माफ करना, ते कमाउण वास्ते केड़ी शक्ति रह जावेगी। गुरमत धर्म भगती कमाउण वास्ते ताकत कित्थों लियावेगा, सारी ताकत तां टोटे टोटे हो रही। भाई साहब कहंदे ने नहीं, जो कुछ तू है वह वेख लैण दे लोकां नूं, बल्कि चंगा कर जे लोकी नहीं वेखदे ते आपे ही दस दे। ते जे तेरी जरूरत नहीं ना पैंदी, लोकां नूं दसण दी जरूरत नहीं पैंदी, ते इस तरह कर गुरु अगे ही कह दे। धन गुरु कलगीधर साहिब दसम पातशाह ने एक बड़ी प्यारी परंपरा बनाई, वह कहंदे ने बजर कुरैत हो जावे, पंजां प्यारियां दे सामने पेश हो जाओ, क्योंकि गुरु दा रूप ने, मत शर्म करो, इन्हां दे सामने आके बैठ जाओ ते कह दियो गुरु रूप खालसा जी मैथों रोमां दी बेदबी होगी, मैनूं खिमा कर दियो, ला दियो तनखा, गुनाहगार हां, लाओ सजा मैनूं, पर मैनूं माफ कर दियो, मैं अगों तो राह पै जावां, मेरी निगाह विच मैल आ गई, मेरे कोलों बजर कुरैत हो गई, पर स्त्री पर पुरख संग हो गया, मैनूं खिमा करो, मैनूं राह पाओ। ते जे नहीं दसांगा पंजां प्यारियां नूं नहीं दसांगा, खालसी अगे नहीं रखांगा, गुरु अगे नहीं रखांगा, दोष अंदर रहेगा, चलदा रहेगा, पलदा रहेगा, बढ़दा रहेगा, गुनाहगारी चलती रहेगी। नहीं, गुनाहां ते निगाह रखण दी लोड़ है। और एक होर गल, तुसां देखिया घरां विच ते बाहर कुछ जानवर ऐसे भी हुंदे ने जेड़े अपना आप छुपाउंदे ने, जिन्हां दे डंग विच जहर हुंदी, वो अपने आप नूं लुका के रखदे ने, क्योंकि उन्हां नूं पता है साडी जहर दे कारण करके संसार साडा दुश्मन है, असीं डंग मारन वाले हां, इस करके अगले डंग चुक्की फिरदे ने साडे खिलाफ। सब नूं भी पता है, पिछू नूं भी पता है, इन्हां नूं पता है कि साडे खिलाफ डांग चुकी होई है, जिन्हां नूं साडे कोलों खतरा है, ते फिर ये अख बचाउंदे ने, ध्यान देना, सप ते निगाह पै जावे ये कतराएगा, अगां पिछा होण दा जतन करेगा, पिछू हनेरे विच तां अपना दाल आउण दा जतन करेगा, लेकिन जे चानण कर दिओ ते भज के खूंजे च वड़न दी कोशिश करेगा। उन्हूं पता है कि मेरे बारे जाणदे ने, मैनूं मार देणगे। बिल्कुल इसे तरह डंग मारन वाले जानवरां वांग जिहड़े दोष ने ना,

प्राचीन अते प्रसिद्ध राग गुजरी भगती भाव दे गायन लई विशेष अनुकूल मन्या जांदा है। इस राग दी संपूर्ण रचना करुणा रस नाल ओत पोत होने कारण संगीतकार ने इस दी प्रकृति करुण मन्नी है। हर श्रद्धा हर प्यास इस दा तरला है। शौ नूं पौणा ही जीवन दा मकसद है। यही दर्शाया है गुजरी जात गवार जा सौ पाए अपना गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना। सौ पौण लई तन मन अर्पो पूज चढ़ावो सब कुछ ही अर्पणा पैंदा है। इस राग विच ऋषभ गंधार अते धैवत कोमल लगदे हन। मध्यम तीबर है और पंचम वर्जत है। निषाद शुद्ध लगदा है। इसका बादी सुर धैवत अते संवादी रे है। गायन समा दिन का दूजा पहर। निर्धारित राग गुजरी विच पहला शब्द श्रवण करो। गा रहे हैं भाई तेजपाल सिंह जी भाई सुरिंद्रपाल सिंह जी सिंह बंधु। शब्द दे बोल हैं ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो। दूजा शब्द भाई निरंजन सिंह जी की आवाज विच श्रवण करो। शब्द है गुजरी जात गवार जा सौ पाए अपना। पहला शब्द ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो।

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां।

महाराज के दरबार विच ताऊ सरंदे ते रबाब बजा के इन्हां रीतां दा कीर्तन सतगुरु दी हजूरी च हुंदा रहा है। ये पुरातन रीत श्री हरिमंदर साहब दी ये भेंट है।

सतगुरु कहंदे ने देह सदा नहीं रहनी। जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना ता एदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

मेरा रूप विगड़िया होया भयानक है। मुबारक है जदों बंदे नूं अपने आप कोलों डर लगन लग पवे ना, ओ समा मनुख दे बदल जाण वास्ते बड़ा मुबारक है। मनुख दे चंगे बनन दे दिन आए समझ। जिस दिन बंदे नूं अपने अंदर फैले हुए औगण नजर आ जाण, धन गुरु नानक ने उन्हां औगणां ते सट नजर पवाई। कहिंदे मैं वेखदा, भाव धन गुरु नानक दे इस शब्द द्वारा असी वेखना है अपने अंदर, ते देखना है सारा कुछ, बहुत कुछ नजर आ जाएगा जी। सारा कुछ नहीं ते बहुता कुछ नजर आ जाएगा। एक स्वान दो स्वानी नाल, एक ता मेरे अंदर कुत्ता भौंक रहा है, उदे नाल दो कुतियां भौंक रही है। लोभ कुत्ता, आशा ते तृष्णा उदे नाल रलियां हुई कुतियां। हर अमृत वेले हर दिन चढ़ते पलक पलक लफ्ज जेड़ा है, एदा अगर आप बिल्कुल सही लफ्ज अर्थ वास्ते लभिए, अंग्रेजी चा पट्टू मारो कह सकते। अगला चढ़दा दिन, हर अमृत वेला हर चढ़दा दिन, जिस वेले मैं भगती दे मार्ग ते तुरना चाहना, मेरे राह विच भौंक भौंक के मैनू ए परेशान कर दे लोभ तृष्णा ते आशा। इन्हां दे भौंकण दे नाल मेरे अंदर हलचल पैदा हो जाती, बल्कि भौंके सदा बयाल, बड़िया भयानक आवाजा कढ दे। कूड़ छुरा मुठा मुरदार, पुराने समय च कुछ लोग जंगली कबीलियां चो ऐसे भी हुंदे सन, जेड़े ना ता लिबास चंगा रखदे सन, ना उन्हां दे खान पहनन पीण दी मर्यादा सी कोई, ना उन्हां दे डेरियां ते कोई समाजिक मर्यादा ही सी। जो मिल गया मार लिया खा लिया, जिन्हू वेखिया लुट लिया। आम तौर ते साडे लोग सासियां नूं भी ऐसा करके जानदे रहे ने, हालांकि सासी कौम कुछ होर सी। ए राजपूतां दे ओ लोग सन जेड़े साहस करके हिम्मत करके बागी हो तुरे सन, पर क्योंकि थां थां फिरदियां होया, इन्हां लोकां ने भी चज नाल कोई टिकाणा ना बनाया, इन्हां दी मर्यादा भी खान पीण पहनण दी कोई चंगी ना रही, ते आम तौर ते समाज च इन्हां नूं भी उसे निगाह नाल वेखिया जाण लग पिया। जेड़े असभ्य लोग सभ्यता रहित सभ्यताहीन लोग साडे समाज च पसरे होए सन, जेड़े किसे समाज नूं किसे इंसानियत दे कानून नूं मनन नूं तैयार नहीं, गलत खान पीण गलत कम करन वाले, ते फिर लोकां नूं लुट्टण मारन। जो कुछ मिल जाए आम तौर ते ओह बिल्ले न्योले जो कुछ मिल गया सब खा लैंदे सन। हुण ओह छुरा भी रखदे सन, तीर भी रखदे सन, हथियार रखदे सन, हालांकि वीरता दीआं निशानियां, शस्त्र कोल होना बहादरी दा निशान है, लेकिन उन्हां वास्ते जिन्हां परोपकार वास्ते वरतना वे, जिवें तुहानूं महाराज ने बख्शे। ते जिहड़ा पराए बुरे वास्ते किसे दा नुकसान करके किसी नूं तरफा के उहदे च स्वाद लैण वास्ते हथियार वरते जाण, ते फिर बड़े भयानक हो जाते। महाराज कहिंदे ने मेरे अंदर कूड़ दा छुरा मैं लक नाल बने। हराम खाना, क्योंकि महाराज ने पावन बाणी च बड़ा स्पष्ट किया है, हक पराया नानका उस सूअर उस गाय। मुसलमाना वास्ते जिस तरह सूर हराम है, हिंदुआ वास्ते जिस तरह गां दा मास हराम है, इसे तरह किसे दे हक ते निगाह रखनी, किसे दा हक मार के खाना, जिवें इन्हां दोहां कौमां वास्ते इन्हां दो चीजां नूं हराम मनिया गया है, इसे तरह इंसान वास्ते पराया हक हराम है। ते महाराज अगे भी कहिंदे ने, गुर पीर हामा तां भरै जां मुरदार ना खाए। जे ए हराम दा मुरदार बंदा नहीं खांदा तां गुरु पीर भी बांह फड़दा, ते जे बंदा कहे मैं गुरु का भी बनिया रहा, गुरु दी सांझ भी बनी रहे, ते मैं हक हलाल दी बजाय लोकां दा मार मार के खांदा रहा, ता गुरु वालों हामी भरे जाण दी कोई गुंजाइश नहीं। महाराज कहिंदे ने इस तरीके दे नाल मेरे अंदर हक पराए दी निगाह जिहड़ी है ओह इक मुरदार खाण वाली गंदी वृत्ति। इस तरह मैं बड़ा मार खोरा भयानक रूप लैके फिर रहा, मैं पत की पंध मैनू अपनी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं,
ना करनी की कार मेरे अंदर आचरण दी रहनी दी कोई लकीर नहीं कोई हद नहीं। तेरा एक नाम तारे संसार एक आसरा है कि इस भयानकता तो अपने आप तो लगते डर वाली अवस्था तो इस संसार तो तेरा नाम मैनू बचा सकता ऐसे आसरे मैं एहा आस एहो आधार आस ला के बैठा एक नाम दे आसरे शायद मेरा जीवन बदल जा। मुख निंदा आखा दिन रात मैं लोकां दे औगण कढ के ये सच करके जानना जिन्ना चिर बंदा दूजियां दे औगण कढदा रहे अपने औगणा ते निगाह ही नहीं पई ते जिन्ना चिर अपने औगणा ते निगाह ना पवे बंदा ठीक किवें होवे। धन गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह दे पावन दरबार च आप जानदे हो साहिबां दे पास बहुत वड्डा चिकित्सालय सी दवाखाना सी लगभग उस वेले पसरिया मोटिया मोटिया सब बीमारियां दा इलाज महाराज सच्चे पातशाह दी निगरानी हेठ होया करदा सी। बड़े बड़े तकड़े सियाने हकीम वैद महाराज ने सेवा च लाए हुए सन ते हर तरह की जड़ी बूटी दवाई जो उस वेले मिल सकण वाली चीज सी वरती जा सकण वाली चीज सी महाराज ने अपने दवाखाने कच कीती सी। इथों तक भी दस्या गया है एक बार दिल्ली दरबार विच भी एक बहुत वड्डे आकार की हरण की लोड़ पै गई सी हकीमां ने कह दिता ते महाराज के दवाखाने बिना होर किधरों नहीं सी। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਮੰਜਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਰੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੈ ਚੱਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਬੈਠਾ ਰੋਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ ਲੈ ਚੱਲੋ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਜਪਣ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਏ। ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਗੀ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਪਿਆ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਗਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੰਜੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਟਿਕ ਜਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਦਵਾਈ ਦੇਣਗੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣਗੇ ਮਲਮਾ ਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਹੜ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀ ਦਿਸਣਾ। ਕਿਸ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਗੰਧ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਗ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਚਮੜੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਵੈਦਾਂ ਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਾਹਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਗੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ। ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰੋਗ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਧ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਰ ਹੋ ਵਿਗੜੇ ਰੂਪ ਰਹਾ ਬਿਕਰਾਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ
तेरा एक नाम तारे संसार मैं एह आस एह आधार मुख निंदा आखां दिन रात इस मुंह नाल मैं लोकां दी निंदिया करदियां जिंदगी बितारियां दिन रात लोकां दियां बुराइयां कढ़ियां पर घर जो ही नीच सनात मैं बड़ा नीच ते कमीना हां कि मैं लोकां दे घरां विच वेखना ध्यान देना लोकां दे घरां वल वेखना आम तौर ते बाणी विच इस सेंस च लिया गया है इस भाव च लिया गया है जेड़ा कोई स्त्री किसी दे मर्द वल वेखे या कोई मर्द किसी दी स्त्री वल वेखे लेकिन केवल शरीरां तक दी गल नहीं है एक कामी पुरुष अपने घर वल ना वेखदा होया किसी दी इज्जत वल वेखदा है बहुत माड़ी गल एक स्त्री अपने पति दी धर्म पत्नी ना रह के ईमानदार ना रह के किसी मर्द वल मैली निगाह नाल वेखे इस नूं पर घर जोना कहिंदे पराए घर वल वेखना लेकिन साडे लोकां दी निगाह इत्थे ही थोड़ा टिकी असीं धन भी लोकां दे घरां दा वेखने वड़ियाईयां भी लोकां दे घरां दीआं वेखने जो कुछ किसे दे घर च नजर आउंदा उत्थे ही साडी लोभ दी निगाह टिकी हर चीज ते साडी निगाह मैली हुंदी चली जांदी साहिब कहिंदे ने इस तरह मेरी निगाह लोकां दे घरां विच पै रही पर घर जो ही देखदा हां लोकां दे घरां विच वेखदा हां बड़ा नीच ते कमीना बने काम क्रोध तन वसे चंडाल ये तुसी भी जानते हो कि आम तौर दे बंदा कातल ते खूनी उदों बनता है जदों ए लोभ दे वस होवे काम दे वस होवे क्रोध दे वस होवे ए खराबियां बंदे कोलों बहुत गुनाह कराउंदियां ने साहिब कहिंदे ने इन्हां चंडालां ने मेरे कोलों बड़ा नुकसान कराया अपना भी पराया भी इन्हां चंडालां ने मैनू नेक इंसान नहीं बन दिता नहीं रहन दिता तानक रूप रहां करतार फाही सुरत मलूकी वेस कई बार ऐसा भी होया कि ओ ता लोक जिन्हां दी गल महाराज ने जिक्र कीता इत्थे ओ लोक ता बाहरों भी गंदे रहिंदे सन सफाई बाहरले जीवन दी भी नहीं रखदे बाहरों भी मर्यादा नहीं रखदे पर कई बार ऐसा भी होया कि आम बंदियां ने बाहरों जे बहुत सोहना साधा वाला वेस धारण बना लिया संता वाला वेश धारण कर ले साहब कहिंदे ने ऐसा भी होया फाही सुरत दिमाग विच आया है कि मैं लोकां नूं फसावां किस तरह लोक फसन किस तरह मेरी फाही विच किवें आउण मैं लोकां नूं किस तरह अपने चुंगल च लै सकां मलूकी वेश बाहरों मेरा नेक इंसानां वाला साधां वाला फकीरां वाला वेश है हौ ठगवाड़ा ठगी देश मैं ठग लोकां नूं ठगण ते लगा होया खरा सियाणा बहुता भार उंज तां लोकी मैनूं सियाणा समझदे ने मैं अपने आप सियाणा बनदा भी बहुता मगर ठगी ते पाप दा भार मैं अपने सिर ते वधाई चलिया जा रहा तानक रूप रहां करतार मैं कीता ना जाता हराम खोर मालक तेरिया रहमतां ते बख्शिशां दा मैं शाकर ना होया शुकराना ना कीता किरत कण बन गया जेड़ा बंदा किसे दा लै के किसे दा खा के फिर ओहदा भी बुरा चितवे उस नूं हराम खोर कह देने आप खा के हराम करन वाला या बिना कीते खान वाला बिना कुछ कीतियां दे खा के डकार मार जान वाला बंदा उसनू हराम खोर कहिंदे जेड़ा हलाल नहीं करता खादे होए जो कुछ उसनू प्राप्त है ओदा हक अदा नहीं करता साहिब कहिंदे ने मैं तेरिया दातां दा शुकराना ना कर सकिया ना मैथों कुछ घाल होई ते ना मैं तेरिया बख्शिशां दा शुकराना कर सकिया बल्कि मैथों बेमुख होया रहा इस तों वड्डा हराम खोर होर की होवेगा मैं कीता ना जाता हराम खोर हूं क्या मुंह देसा दुष्ट चोर मैं तेरे बूहे ते तेरे दर ते उते आके की मुंह विखावांगा मेरे अंदर किन्नी दुष्टताई ते किन्ना चोरां वाली गंदी बिरती है मेरे अंदर पल रही नानक नीच कहे विचार तानक रूप रहां करतार मैं निमाना मैं नीच एक विचार दे रहा हां कि मैं चंगे रूप च नहीं रह रहा मैं कोई चंगा जीवन बतीत नहीं कर रहा धन गुरु नानक दा यह शब्द साहिबा दी यह बाणी सानू अपने अंदर झात पाउण वास्ते एक बहुत प्यारी रोशनी है ते मनुख नूं जे अपने अंदर यह रोशनी मार के अपने

मूर्ख प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमली अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए। जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता, नीर कहंदे ने पानी, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती।

हाँ तिन बलिहारे जा। पहली गल साहिब एक सफल रुख है पर इदा नाम है अमृत जिन पिया ते त्रिपत पाए ए नाम रूपी अमृत जिन पीता ओ त्रिपत हो गया क्योंकि नाम विच सारे सुख हैं दुनिया दे पदार्थां विच सुख नहीं एक चीज ले लो दूसरी दी इच्छा पैदा हो जाती आज इतनी माया है गुजारा हो रहा है पर इच्छा है इस तो ज्यादा चाहिए एक चीज घर विच है पर मन दी इच्छा होर वध गई होर चीज चाहिए दुनिया दे पदार्थां दे नाल इंसान कदी रजदा नहीं पर साहब जी कह रहे ने जिन्ना ने अमृत रूपी नाम पी लिया नाम जप लिया उन्हां दे मन दी तृष्णा खत्म हो जाती है ते जिन्ना ने अमृत रूपी नाम पीता साहब जी कहंदे ने हौं तिन बलिहारे जाऊं मैं उन्हां तों

अंदर भी है। तो साहब जी बयान करते ने जेड़ा ते प्रभु नाल जुड़ जाए ओदी तृष्णा खत्म हो जाती है, क्योंकि सब सुखदाता राम है दूसर नाहन कोई। जे सारे सुख नाम विच ने फिर जेड़ा नाम नाल जुड़ जाएगा वो भुखा किवें रह सकदा है, वो त्याया किस तरह रह सकदा है। पर लोड़ है परमेश्वर दे नाम नाल जुड़न दी, ओदे नाम रूपी अमृत विच इशनान करन दी।

वारी बन जा, कन्हे बन जा, तौ साहिब के नामी। ऐ परमेश्वर, मैं तेरे दुवारी, तेरे नाम तो कुर्बान जाना। तन गुरु नानक साहब जी बयान करते हैं, आओ अपनिया बिरतियां उस पास ले चली। गुरु नानक साहब के पिता मेहता कालू जी धन गुरु नानक साहब का राह पै तकते ने। बेबे नानकी गुरु नानक साहब के वड्डे बैन जी आए अपने पिता मेहता कालू नू मिले, नाल बेबे नानकी दे पति भाई अजय राम भी आए।

अपनी माता माता तृप्ता नु गले लग के मिले तेनू गल ना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया ते नाले कहन लगे दिए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नु देखी तू आई है कुछ भरोसा होया मन नु कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे भाई अजय राव अपनी सौरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मत्था टेकिया। मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस्ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज जी दर्शन होंगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे भाईया लगते ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने पर ओ रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा है। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्हां ने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने ता बेबे नानकी जी कहन लगे हाली आए ते नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजां दियां डारां पहला उड्डन लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाई अजय राम गुरु नानक साहब दी याद विच जंगल वाल तुर पए एक दरख दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब दा उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए अमली अमल ना अंबड़ै मच्छी नीर ना होए जो रते सह आपने तिन भावे सब होए। ऐ बादशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदे अमल तो बगैर जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी असि भी तेरे नाल इस तरह ही प्यार करने हैं तेरे बगैर असि भी जी नहीं सकते।

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो। बड़ी वैराग विच है धन गुरु नानक साहब, माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तो थले उतरे, भज के आए चरणा ते मथा टेकन वास्ते, पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लिया। कहन लगे ना भैन तुसी वड्डे हो, भैणा भरावां दे पैरां ते मथा टेकन ते नहीं हो सकता। सत्संग ए इतिहास ये कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ये कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताकि साडे मना विच साडे हिरदे विच प्यार होवे। जे साडे हिरदे विच प्यार होवेगा साडे घर विच भी प्यार होवेगा। जिहदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिहदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा। चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जेड़ा चंगा पति ना बन सके, चंगा पिता ना बन सके, जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके, जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके, साथ संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता। ओ ना सिख हो सकता है, ओ ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई, वो किसे गिनती विच नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने

जद इतने बचन कहे भैन जी है बेबे नानकी तुसी वड़े हो तुसी मेरे पैरा ते मत्था टेको ते नहीं हो सकता साथ संगत एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ते वखरी गल है इना गल्ला नू कोई मन्ने पावे ना मन्ने पर सुख ता मनण विच ही है हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नू किया मरदाने हुण तुसी जाके भाई अजय राम जी नू लैके आओ शहर वासियां नू पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछदे ने बेटा किथे चले साहब जी कहन लगे मरदाना भाई अजय राम नु वैराग विच उठा नहीं सके धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ए प्यार भागा नाल मिलता है और इस प्यार नूं ओही जानता है जिसने ए प्यार किया। भगत कबीर जी कहंदे ने सो कत जाने पीर पराई जां के अंदर दर्द ना पाई। भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको ही गल नजर आती। भगत रविदास वह भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब भी कहते ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले वीर कि ए प्रेमा भगती दे तीर जेड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने ओही जाने।

हां, पर जद मैं तुहानू देखदा मैनू तुहाडे मत्ते तों अल्लाह दा नूर नजर आंदा। तुहानू देखदा, तुहाडे मस्तक नूं देखदा, तुहाडे मस्तक तों अल्लाह दा नूर मैनू नजर आंदा। साध संगत महापुरुष किसे एक दे नहीं, वो सब दे सांझी हुंदे हन। ते जेड़े सारे नाल प्यार करदे ने असल विच धर्मी भी उही ने। जेड़ा अपने धर्म नूं चंगा दूसरे नूं माड़ा कहे वो धर्मी नहीं हो सकदा, क्योंकि जेड़ा धर्मी है वो ते सब नाल प्यार करदा। इस तरह इन्हां सारे प्यारियां ने मिलके धन गुरु नानक साहब का जन्मदिन मनाया, गुरु कियां खुशियां प्राप्त कीतियां। आओ भाई इस कथा तो आपां भी इह सिख्या लईए, एक ते साहिब वास्ते अपने मन विच प्यार रखे, दूसरा जीवन एहो जिहा होवे कि साडे जीवन तो लोग सिख्या लैण। सब नाल प्यार करिए, और ऐसा प्यार कि साडा इह प्यार दूसरियां दे हिरदे विच भी प्यार भरे और नफरत नूं दूर कर देवे। इह तां ही होवेगा जे असीं बाणी दीआं इन्हां पंगतियां नूं अपने हिरदे विच वसावांगे। आओ अरदास करिए, ऐ धन गुरु नानक पातशाह सानू नहीं पता वारी किस तरह जाई दे, सानू नहीं पता नाम तो किस तरह कुर्बान होई दे, पर तेरा ही शब्द पढ़ के अपने मन की भावना पर प्रगट करने हैं कि असी भी तेरे तो वारी जाने हैं, तेरे तो कुर्बान जाने हैं, तेरे नाम तो कुर्बान जाने हैं, क्योंकि तेरे नाम दे

मेरे मालिक मैं तेरे नाल जुड़ जा, तेरी गलवकड़ी विच आ जा, तेरे विच समा जावा, मन करके तन करके, अधूरा नहीं, केवल तन करके जुड़िया होवा, मन ना जुड़िया होवे ऐसा भी नहीं। ते जे मैं ऐसे बहाने करा कि मेरा ता मन जुड़िया है, तन दी केड़ी लोड़, प्यार ता इस तरह कोई नहीं होता। जिन्हां ने प्यार कीता है महाराज उन्हां दी गल करदे ने, गुरसिखां दी गल करदे ने, भगतां दी गल करदे ने, संतां दी गल करदे ने जिन्हां ने प्यार कीता, ते प्यार कीता ते फिर भरपूर कीता। प्यार च अधूरेपन दी की गल, ते जद भरपूर प्यार करना है ते फिर तनो मनो प्यार करना है। तुसां वेखिया है सुहागना पति नाल मिठा बोलदियां ने ते पति दी प्रसन्नता वास्ते तरह तरह दे शिंगार भी करदियां, पति दी प्रसन्नता वास्ते चंगे पकवान भी पकाउंदियां, ते पति थोड़ी देर पछड़ जावे घर आउण तों बौरियां होईयां फिरदियां रहिंदियां ने, मन विच भी प्यार है। शरीर करके भी पति दी प्रसन्नता लैण वास्ते प्रयत्नशील ने। ते जे कोई कहे मैं तां अंदरों प्यार करदा, बाहरले प्यार की केड़ी लोड़ है, घर बैठा रवे, गुरुद्वारे आउण दी थां नहीं, गुंजाइश नहीं, समा नहीं, अधूरा प्यार लैके बैठा होगा अबल तां होना ही कोई। एक ऐसा भी हो सकता जिहड़ा गुरुद्वारे आके बैठ गया, मन इत्थे नहीं पिया जुड़दा, मन किते संतान ते रह गया है, मन किते मकान ते रह गया है, मन किते दुकान ते रह गया है, मन किते भटकदा रह गया, शरीर करके इत्थे बैठा रह गया है, अधूरी हाजरी लगेगी। और वो बड़ी खास कथा है जिहड़ी साहिब कलगीधर पातशाह दे द्वारपाल दो गुरसिखां विचों इक चला गया सी रात नूं, रासधारियां दी रास वेखण चला गया सी। सवेरे आया ते महाराज ने पुछ लिया क्यों भाई रात हाजिर रहे सो, बड़ा परेशान होया। महाराज ने पुछिया क्यों भाई रात पहरे ते हाजिर रहे सो, बोल पिया, कहन लगा महाराज मैं गैर हाजिर हो गया सा, किथे गया सा, कहिंदा जी रास वेखण चला गया सा। अनाल दे पिंड रासधारिये बड़े गुणी आए सन, बड़ा चिर हो गया सी जद तों तुहाडे चरणां विच आया, इस पासे कदे गए नहीं सन, चला गया सा, गलती हो गई। साहब कहन लगे चंगा कीता जी, गया है चंगा कीता है, तू दस की वेखिया ते की सुनिया। कहन लगा महाराज चंगा कोई नहीं कीता, मैं बहुत माड़ा कीता, एक तां गैर हाजरी कीती, सेवा तो गैर हाजरी की, एक मैं गलत पासे गया, चंगा तो मैं कोई नहीं कीता। महाराज कहन लगे चंगा फिर दस वेखिया की ते सुनिया की, सिर नीवा करके खलोरिया, खिमा मंगी। महाराज ने फिर पुछिया वेखिया की ते सुनिया की, कहिंदा महाराज ना कुछ वेखिया ते ना सुनिया। क्यों भाई ऐसा क्लियर हो गया? कहन लगा महाराज गया तो बड़ा धाके सा, भीड़ नू चीरदा सिरे ते जा पहुंचिया, पर उथे कुछ कहानी होर तरह हो गई, लोग रासधारिया नू छड़ के मेरे वल वेखन लग पे, और कुछ लोग गल्लां भी करन लग पे, गुरु का सिख इत्थे किधर फिरदा, वेस तो गुरु का सिख जापदा, इहदी दोहरी दस्तार, इहदी श्री साहब, इहदे रहनी बहनी दे सारे लक्षण पूर्ण गुरसिखां वाले ने, इत्थे की करना है? ते जे इत्थे आया रात इत्थे जागदा रहा, अमृत वेले किवें जागेगा? जे अमृत वेले ना जागिया ते नितनेम किवें करेगा? नितनेम ना करेगा ते फिर सिख किवें होया? फिर तां कोई परूपिया ही होना, जिवें असीं रास धारीए तरह तरह दे रूप धारण करके ते लोकां दा जी परचावा पै करने आ, किते इह वी तां नहीं सिख दा रूप धारण करके अपना या लोकां दा जी परचावा करदा फिरदा हो? कहिंदा महाराज उन्हां ने गल्लां कीतियां ते मेरे कोल खड़ोना औखा हो गया, मैं पिछा नूं निकलना चाहिया पर निकलण नहीं दित्ता उन्हां ने, मैं उत्थे ही सिर गोडियां च दे के बैठ गया। महाराज ना मैं कुछ सुनिया ते ना कुछ वेखिया, तुहाडे चरणां दा ध्यान करके पछताउंदा रहा। साहिब कहन लगे तू फिर कहदा गैर हाजर होया, तेरा मन तां इत्थे रहा ना। दूजे नूं कहन लगे तू तां हाजर रहा कि महाराज मैं तां किधरे कदम नहीं हिलिया। साहब कहन लगे कदम तां तेरे शरीर दे नहीं हिले, मन करके भी हाजर रहे, गड़बड़ा गया। कहन लगा महाराज मन तां मेरा इहदे मगर तुर गया सी, मन तां मेरा रासधारियां वाले टिकाणे ते पहुंच गया सी, उन्हां दीआं आवाज़ां मेरे कन्नां च आउंदियां रहीआं ते मैं रचना रच के इस तरह नचदे होणगे, इस तरह फेरे लैंदे रहे होणगे, मैं ओह तमाशा अखां दे सामने बना के वेखदा रहा। साहब कहन लगे इह बंदा हाजिर सी शरीर करके, लेकिन मन करके गैर हाजिर सी, बड़ा पछतावा लगा, इहदे नाल तां जाण वाला ही चंगा रहा। महाराज कहन लगे नहीं, तुसां दोवां चंगा नहीं कीता, जिहड़ा मेरे सरूप नूं गलत जगह ते लै गया है इहने भी मेरे नाल द्रोह कमाया।
मन करके हाजिर रहा है लेकिन शरीर मेरा स्वरूप तो उथे लै गया है। जेड़ा शरीर करके इथे रहा है मन करके उथे फिरदा रहा है। मैनू यह अधूरे प्रेमी दोवे ही परवाह ने। मैनू यह अधूरी प्रीत अधूरी सेवा अधूरी हाजरी दोवां दी परवाह नहीं। एक शरीर करके गैर हाजिर फिरदा है एक मन करके गैर हाजिर फिरदा है। मैनू तो दोवां तरह नाल हाजिर चाहिए। और कई ऐसा करते ने इथों तक मैनू खिमा करना। एक बार ऐसा भी होया किसी प्रेमी नूं क्या गुरमुखा केसां दी बेअदबी ना करिया कर। कहिंदा जी प्यार तां अंदरों चाहिए केसां नाल की हुंदा। कमाल जे तेरे अंदर प्यार हुंदा ते जिस दे केस ने जे कलगीधर दे चरणां नाल तेरा प्यार है ते उहदी मोहर दा तूं एवें बेड़ा गर्क करदा एवें उहदी मोहर नूं कैंची धरदा नहीं हो सकदा सी। तैनूं गुरु नाल प्यार कोई नहीं होना अंदर भी कोई नहीं होना अंदर दा बहाना ना कर। उहने इक बड़ी अजीब गल कही। कहन लगा जी आ जिन्ने फिरदे ने दाड़ियां वाले केसां वाले मैं एक गल पुछना मैं दसो कि पंज ककार ने। मैं बिल्कुल ठीक ने। कहिंदा केस कंघा कड़ा कशहरा ते किरपाण। मैं बिल्कुल ठीक। कहिंदा विखाओ मैनू किन्नियां ने बाकी दे चार रखे हुए 20% मैं उन्हां नालों फालतू हां। होर कोई खास गल वो जिन्हां ने केस रखे हुए ने कंघे की बजाय वो अंगीठी ते पई कंघी वरदे ने। कंघा कोई नहीं केसा विच रखदे किरपाण कोई नहीं पाउंदे कशहरे की बजाय कुटनिया जी पाई फिरदे ने कच्चिया जिया जेड़िया बच्चिया नूं पाई दियां ने ओह जिया वड्डे पाई फिरदे ने। एक बड़ी गल होवेगी ते बहुतिया ने कड़ा पाया होवेगा बाकी तां किन्नियां रहता तो ओ गैर हाजिर ने। मैं उन्हें एक बेनती की थी। मैं क्या गुरमुखा एक गल का ध्यान रखी जितना चिर केस नहीं रखता सिखी शुरू नहीं होती। एक रुख है ना उहदे पंज हिस्से ने जड़ मुड टाण पत्ते ते फुल। ओही फुल जिहड़ा फल दा रूप धारण करदा है ओही फुल जिसने कल फल बन के इसे रुख दा मुड़ के बी बन जाणा। पंज हिस्से ने रुख दे। कहन लगा जी हां हुण तू इह दस एक बंदे ने फुल झाड़ दित्ते दूजे ने पत्ते ते टाणियां छांग दित्तियां तीजे ने मुड कट दित्ता है लेकिन तू देख रहा उन्हां जड़ां विचों एक नवा रुख कल नूं फिर फुट खलोवे। कहिंदा जी इह तां है। मैं कह दे जे रुख उत्ते खड़ा रहे उत्ते सारा रुख खड़ा रहे थल्यों जड़ां कट देवे फिर। कहिंदा जी फिर तां कोई नहीं बचन लगा। मैं क्या सिखी दियां जड़ां केस जद सरूप ही नहीं तां सिखी शुरू नहीं होती। सिखी दे रुख दियां जड़ां केस ने। और एक गल दा ध्यान रखना वारने जाइए साहब कलगीधर पातशाह तों किड्डे विज्ञानक सन जिन्हां ने बंदे दे अधूरेपन नूं डक्का लाया कि नहीं तू अधूरा ना हो कुदरत ने तैनूं पूरा बनाया इस पूरेपन च अधूरापन पैदा ना कर। आप जी नूं पता होवे केस मनुख दा ओ अंग ने जिन्हां दे बारे कहण नूं तू कह देवे कि फंक्शन है गैस की करदे की ने केस। लेकिन अज वर्ल्ड हैल्थ इंस्टीट्यूट जेड़िया खोजा च लगी है उन्हां विच एक खोज है टैलीपैथी। ध्यान देना दिमाग दियां लहरां सोचां दियां लहरां जो मैं सोचदा वह दूजे दे दिमाग तक ट्रांसमिट हुंदियां ने बल्कि सारे वातावरण च निकलदियां ने। ट्यून होया या दूसरा मन उस नूं प्रवान करदा। दिमाग दियां लहरां नूं जेड़े लोग प्रवान करना जाणदे ने एकाग्रता नाल उन्हां नूं टैलीपैथ कहिंदे। दिमागी तौर ते ही बिना कुछ बोलिया अपने दिमाग दियां लहरां नाल ही मरीजां दे दिमाग दे विच झटके दे के वह इलाज भी करदे। घालना वाले लोगों की गल है। पुराने समयां तो मनोविज्ञानक यह ढंग बच्चियां नूं पढ़ाउण दे काम भी आउंदा रहा चेलियां नूं सिखाउण दे काम भी आउंदा रहा। लेकिन एक प्रश्न पैदा होया असीं सुंघदे हां नक्क नाल असीं सुणदे हां कन्नां नाल असीं वेखदे हां अखां नाल चखदे हां जीभां नाल ते असीं छोह के जिल्द नाल अपने शरीर की स्किन नाल छोह के ठंडे तत्ते का पता करदे। लेकिन जिहड़ियां दिमाग दियां लहरां जिन्हों सिक्स्थ सेंस कहने आपां छेवीं हिस कहने इहदा सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ते सोर्स ऑफ सेप्शन की हो सकता है। और तुसीं हैरान होवोगे इस नतीजे ते पहुंचे ने कि टैलीपैथी का
ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬਹੁਤ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਲਦ ਨਾਲ ਰਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਐਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰੋ ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਓ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਕੋਈ ਢਾਲ ਹੈ? ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਲ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫੌਰਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਛ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਕਹੇਗਾ ਕੈਸੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਦਾ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਰੂਪ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਲਹਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜਟਾ ਜੂਟ ਰਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ, ਯਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੇ ਤਸਲੀਮ ਖਮ ਹੈ ਜੋ ਮਿਜ਼ਾਜੇ ਯਾਰ ਮੇ ਆਏ, ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਨਖਰੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਬਚੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਟੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਚੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ, ਕੋਈ ਸਵਾਦ, ਕੋਈ ਰਸ ਚੱਖਣਾ ਹੈ,

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है जिसकी बहुत सी कारें हैं, जिसकी बहुत फैक्ट्री है, जिसके बहुत से बंगले हैं? नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

साहिब अस फतेह गोविंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस ए लफज जेड़े लफज आप जी सरवण कर रहे हो ए लफज जेड़े सन

बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ये लफज लिखाए जेड़े के इतिहासिक लफज हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने नाम ते सिक्का नहीं चलाया बल्कि धन गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाम ते ए सिक्का चलाया।

जेड़ा जंगल विच बैठा योग साधना करदे इस नू वैरागमय नींदर तू जगाण वास्ते युग पुरुष धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नादेड़ वाल गोदावरी नदी के किनारे वाल

गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहण वाले जिदे आश्रम वाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे ने, इस बारे थोड़ा जहा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी, जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इन्हां दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिया लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नू मार सुटिया, पर ओ हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नू तीर मारिया हिरनी जड़ी सी मरी, ओदे पेट विच दो बच्चे सन जेड़े के तड़फ तड़फ के ओ भी मर गए। इना छोटे छोटे बच्चियां दी मौत हिरनी दे नाल लक्ष्मण देव ने देखी, ओदे मन ते अजेहा असर होया कि उसने घर बार छड़ दिता। इस दुनिया तो उसका जी भर गया, पहला सन्यासी बनिया, उसका नाम नारायण गिरी पै गया, फिर बैरागी बनिया, योग सिखिया ले, फिर माधोदास बैरागी बन गया। कई जगह हुंदा होया, दखण महाराष्ट्र नादेड़ वाल तुर पिया, गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहन लग पिया, अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पिया। इस गोदावरी दे किनारे बहुत समा योग साधना करदया बीत गया। इत्थे ओ